0: ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇਰੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਖਕਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਆਡੋਰ ਕੰਟਰੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕੁਆਡੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਡੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਕੁਆਡੋਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਾਲ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਪਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਉਹ ਟੱਪ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੇ ਉਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹੀਦੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਉਰੀਗੁਏ ਨੂੰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਕਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਕਸਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਏ ਨੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਲੀਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਦੂਕ ਅੱਛਾ
1: ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਲੱਗ
2: ਗਏ ਵਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੀ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਥੀ ਏਕ ਬਾਰ ਸੁਣਨੇ ਮੇ ਕਈ ਬਾਰ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਭੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ
0: ਜੀ
1: ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਏ
2: ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਰ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਮੇ ਏਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਮਸਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ ਏਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਜੋ ਟਾਪਿਕ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿ ਯੇ ਤੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਖਾਈ ਥੀ ਐਸਾ ਨਾ ਲਗੇ ਐਸਾ ਲਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਯਾ ਵੀ ਇਸਮੇ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਖੈਰ ਹਮ ਲੋਗ ਆਏ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੀ ਤਰਫ ਤੋ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਕੇ ਅੰਗੋ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸਮੇ ਫੇਫੜੋ ਕੇ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਫੜੋ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇ ਇਸਕਾ ਵਿਵਰਣ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋ ਦੀਆ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਦੋ ਹੋਤੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਫੇਫੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋ ਮੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਤੀਨ ਲੋਬਸ ਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਲੋਬਸ ਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਮੇ ਇੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਲੋਬ ਲੋਗ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਲਾ ਹੁਆ ਅਲੱਗ ਸਾ ਮਾਸ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ ਕਾਮ ਵੋ ਵੀ ਵਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮ ਉਸਕਾ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜੋ ਕੋ ਔਰ ਹਾਰਟ ਕੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਵੋ ਕਾਮ ਉਸਕਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਫੇਫੜੋ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਯੇ ਸਭ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮੇ ਹੋਤਾ ਉਸਕੋ ਲਿੰਗੂਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀਵ ਕੋ ਲਿਕਵਿਡ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਮੈਨੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੇਫੜੇ ਹੈ तीन लोग राइट साइड के हैं, दो लोग लेफ्ट साइड के हैं, ये सभी एक लिहाफ जिसको बोल सकते हैं आप हिंदी में कवर किए हुए हैं, और उस कवरेज का नाम है प्लूरा। और वो जो प्लूरा है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के जो बाहरी परत होती है ना, बाहरी परत जो छाती की पसलियों के साथ अंदर अंदर लगती है, उसको हम ये जो है ना पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। और जो बिल्कुल फेफड़ों के साथ जुड़ा होता लेयर उसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। और विसरल प्लूरा की खासियत ये है, वो जो ऊपर वाला है ना, वो तो ऊपर वाला घेरा ही घेरा है, अंदर वाला जो है वो हरेक लोब के अंदर तक जाता है, ताकि एक लोब का चाहे राइट लंगी है तो तीन लोब हैं, तो तीनों लोब्स का आपस में कोई लिंक इंटरनल नहीं है इस तरह से, और उनका जो लिंक है वो वही ब्रोंकस की वजह से है, वो सांस नली की वजह से है, या जो बाहर से खून की नालियां आ रही हैं वहीं से ही इसका लिंक है, और वहीं से बाइफरकेट होकर सब डिवीजन बांटना जिसको बोलते हैं, बांटना होने से सभी लोब्स को वही खून की सप्लाई होती है, वही खून वापसी जाने का तरीकाकार होता है, वही लिम्फ का तरीका होता है, लेकिन अंदर से इस तरह उनका एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए वो जो प्लूरा जिसको हमने बोला विसरल प्लूरा, वो विसरा बोलते हैं अंग को, जो किसी अंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो अंग क्या है? फेफड़े। तो फेफड़े के साथ जुड़ा हुआ जो प्लूरा है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। ये दोनों ही लेयर है, इन दोनों में ही आपस में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है उसका सतलुज दरिया की तरह, ऐसा बड़ा नहीं है, ये आपस में चिपके होते हैं, सिर्फ इतना ही है कि फेफड़े जब फैलते हैं तो उनको स्पेस मिलती है, फेफड़े जब सुकड़ते हैं ये स्पेस थोड़ी और वाइडर हो जाती है, क्योंकि विसरल जो है वो तो लोब्स के साथ चिपटा हुआ है, जो पेराइटल है वो बाहरी दीवार जितना जितना घेरा चेस्ट का है वो उसके साथ लगा हुआ है। सो उस फ्लूड का मकसद ये है कि कहीं किसी वक्त अगर फेफड़ों में कोई खराबी होती है या कुछ ऐसा होता है, ज्यादा फैलाव होता है, तो उसके हिसाब से ये फैल सके, इसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना लगे, इसको फैलने का समय मिल जाए। तो ये प्लूरा की बात मैंने कही थी। फिर मैंने कहा था कि फेफड़ों के जैसे राजमा का दाना होता है ना, राजमा के दाने की तरह ये फेफड़े का एक अंदर का अंदरूनी भाग जिसको हम मीडियल साइड बोलते हैं, और मीडियल साइड का भी मैंने आपको ये कहा था कि जितना शरीर की सेंट्रल लाइन के साथ नजदीकी होता है एरिया उसको हम उसका मीडियल पोर्शन बोलते हैं, मीडियल साइड बोलते हैं। और इसी तरह जो फेफड़ों की अंदरूनी साइड है, जो हमारे सेंटर अगर ले हैं नाक से लेकर सीधी एक रेखा खींचें आधा आधा कर लें, तो जो मिडल वाले साइड का जो साइड है फेफड़ों की उसको हम मीडियल साइड बोलते हैं, और जो दूसरी है उसको हम डिस्टल साइड बोलते हैं। तो इसी तरह ही जो इसकी मीडियल साइड है दोनों फेफड़ों की, राइट की भी और लेफ्ट की, उसमें एक ऐसा है जैसे राजमा के सेंटर में एक जगह बनी होती है ना, वहां से बेसिकली बीज का वो आना दाना ताना पाना सब कुछ वहीं से बुना जाता है। इसी तरह फेफड़ों में आने वाला खून, फेफड़ों में आने वाली हवा, फेफड़ों से बाहर जाने वाली बलगम, फेफड़ों से बाहर जाने वाला जो खून के साथ उसका गार्बेज, वो सब चीजें जैसे दूसरे सेलों से जाती है उसी तरह इसमें जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइलम, और उस हाइलम से होकर ये सारा कुछ जाता है। फिर मैंने ये कहा था कि जो फेफड़े हैं वो एक पिरामिड की टाइप है, पिरामिड तो सभी ने आजकल सुना हुआ है कि रोम में जो पिरामिड है बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, उसके अंदर क्या है अभी तक किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे, कभी खोला ही नहीं गया उसको। पिरामिड की टाइप के सहायक होते हैं, और इनका पिरामिड की ऊपर वाली जो चोटी होती है ना, वो जो हमारी क्लेविकल की हड्डी है उसका निचला बॉर्डर है वहां तक जाती है, दाएं दहने की भी और बाएं लंग्स की भी वहां तक जाती है, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो पेट से सेपरेट किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम, एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो पेट और छाती के हिस्से को बांटता है उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं कि पक्की दीवार है, उसमें आने जाने का रास्ता है, सात डिफरेंट रास्ते हैं उसमें मेजर इम्पोर्टेंट चीजें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाली हैं। जैसे मैंने कहा था कि ऊपर से खुराक की नाली आएगी तो वो नीचे जाएगी, हाँ जी, और इसी तरह ही ऊपर से एओटा आएगी जो खून की सप्लाई करती है, तो थोरेसिक एओटा एब्डोमिनल एओटा में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। इसी तरह नीचे से जो आएगा वेना केवा उसको बोल देंगे और उसका नाम रखेंगे इन्फीरियर वेना केवा, वो ऊपर जा रही है। तो इस तरह नर्व सिस्टम है, इसी तरह ही लिम्फ चैन है, और इनका पिरामिड की ऊपर वाली जो चोटी होती है ना, वो जो हमारी क्लेविकल की हड्डी है उसका निचला बॉर्डर है, वहां तक जाती है, दाएं देने की भी और बाएं लंग्स की भी वहां तक जाती है। और नीचे का जो पोर्शन होता है वो पेट से सेपरेट किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो पेट और छाती के हिस्से को बांटता है, उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं कि पक्की दीवार है, उसमें आने जाने का रास्ता है, 7 डिफरेंट रास्ते हैं उसमें। मेजर इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाली हैं।

खुराक की नारी आएगी तो वो नीचे जाएगी, हाँ जी, और इसी तरह ही ऊपर से एओटा आएगी जो खून की सप्लाई करती है, तो थोरेसिक एओटा एब्डोमिनल एओटा में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। इसी तरह नीचे से जो आएगा वेना केवा उसको बोल देंगे और उसका नाम रखेंगे इन्फीरियर वेना केवा, वो ऊपर जा रही है। तो इस तरह नर्व सिस्टम है, इसी तरह ही लिम्फ चैनल है। तो ये सब चीजें तकरीबन 7 ओपनिंग्स ऐसे हैं, रस्ते हैं कह सकते हैं, जिससे आवाजाही छाती से पेट में, पेट से छाती में होती रहती है। लेकिन ये एक मेम्ब्रेन है जो इन दोनों को सेपरेट करता है और फेफड़ों की लिमिट यहां तक ये लिमिट करता है। बेशक हम ये बोलते हैं कि छाती के अंदर जहां तक पसलियां हैं वहां तक फेफड़े हैं, लेकिन फेफड़ों से कुछ उधारी लेकर जगह ये जो अब्डोमिनल ऑर्गन है ना, दो, एक राइट साइड में लिवर है, बाईं तरफ में स्प्लीन है, इसको स्प्लीन बोलते हैं, और ये काफी सारा हिस्सा फेफड़ों का ले लेते हैं, और नीचे से फेफड़े जो है वो इनको जगह देने के लिए ऐसे बन जाते हैं जैसे डोम होता है, ऊपर से गुंबद की तरह इस तरह बन जाता है ताकि इसमें लिवर रह सके। हाँ, क्योंकि लिवर और तिली दोनों ही पसलियों के अंदर अंदर रहेंगे तो हम समझेंगे ये नॉर्मल है, और पसलियों से ये जब बाहर आते हैं तो समझते हैं मुसीबत है। मतलब क्या हुआ कि ये लिवर एंड स्प्लीन ये दोनों छाती का ही हिस्सा लेते हैं, रहने की जगह इनकी जो है वो उसी में है, छाती में ही है, लेकिन ये है तो एक ही चीज है, लेकिन इनको जगह देने के लिए ये जगह है तो फेफड़ों की, नीचे से वो गुंबद की तरह बन जाती है, और ये फेफड़े सॉरी ये लिवर और ये तिली बाईं तरफ आपस में इसमें लॉज हो जाते हैं, ये रह लेते हैं, इसी तरह इनके डिवीजन हो जाती है, ठीक है। फिर इनकी जो बाकी है क्योंकि है तो अब्डोमिनल ऑर्गन ये पेट के हिस्से हैं, तो इसलिए इनकी नालियां नुलियां तो वगैरह सीधी अब्डोमिन में जाती ही जाती हैं, या इनको खून की सप्लाई होती है वो तो पेट से होती होती है, इसका उनके उनसे कार डायफ्राम से ऐसा कोई लिंक नहीं होता, डायफ्राम एक सेपरेट दीवार है इसके लिए, ठीक है। सीधा छाती से कोई डायरेक्ट चीज लिवर के साथ नहीं जुड़ती, सीधी छाती से तिली के साथ कोई चीज नहीं जुड़ती, इनको खून की सप्लाई होगी या इनसे खून वापस जाएगा या इनका लिम्फ चैनल सेपरेट होगा, ये सब अलग अलग पेट का ही हिस्सा है। लेकिन यही सिर्फ एक बहुत अचंभित बात है कि ये लोग छाती की पसलियों के नीचे नीचे रहते। और एक बात और भी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सी जरूरी चीजें हैं ना, उनके लिए हम प्रोटेक्शन ज्यादा करते हैं, और प्रोटेक्शन जब ज्यादा करते हैं और पसलियां हड्डियां हैं ये सपोर्ट करती हैं हार्ट को, लंग्स को, मीडियास्टाइनम को, बड़े इंपॉर्टेंट अंग है ना, वहां पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने हड्डियां बना दी, केज बना दिया, पिंजरा बना दिया कि बाहर से चोट लगे और इनको ना लगे, बच जाएं। इसी तरह ही इनको भी कहा कि भाई लिवर है ना, इसमें पेट में रहेगा तैयार, इसको कुछ ना कुछ जल्दी चोट लग सकती है, इसको छाती के एरिए में थोड़ा सा हिस्सा लेकर रहने दे। ये तिली जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो अब्डोमेन की, लेकिन इसको तिली को चोट लगी, तिली फट गई, बहुत से एक्सीडेंट ऐसे होते हैं और ऐसा कुछ हो गया तो वो सीरियस बात हो जाएगी, इसलिए इसको भी पसली के नीचे ही कर दे। तो हिस्सा ये अब्डोमेन का है, रेजिडेंट ये छाती के है, लेकिन छाती से इनको सेपरेट करता है डायाफ्राम। सो ये इस तरह की ये हकीकत है जो हमने आप सब लोगों को बताई। और मैं फेफड़ों की बात कर रहा था तो फेफड़ों का जो रंग पिंक था, स्पंजी टाइप थे, ये तो याद ही हो गया होगा, अपेक्स ऊपर वाली चोटी जैसी जैसे है पिरामिड की तरह, नीचे का बेस जो मैंने अभी बताया कि वो डोम की तरह है जिसमें अंदर लिवर और स्प्लीन होती है, और इसी तरह ही बाएं फेफड़े के अंदर भी मीडियल साइड में, मीडियल साइड की बाएं फेफड़े का जो अंदर की साइड वाला हिस्सा है उसमें एक नॉच होते हैं, खुर्चा हुआ, किसी चीज को अंदर से खुर्च दे ना, अब करछी है ना, करछी आपने देखी होगी किचन में आमी होती है, सारे सभी की होती है, वो करछी क्या है, अंदर से खुर्च के उसको खा

0: कर दिया गया। सो इसी तरह ही ये खुर्च के कुछ ऐसा हिस्सा फेफड़ों का बाईं तरफ रख दिया गया, उसमें हार्ट होता है, उसमें हार्ट को रखा गया। बेशक थोड़ा सा हिस्सा, मैंने कई बार ये बात कही है कि 1.2 सेंटीमीटर मिडल लाइन से बाईं तरफ भी हार्ट की बाउंड्री है, वहां उसका हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर ये बाईं तरफ है। तो इसलिए वो बाएं फेफड़े से इस तरह अंदर से नौच कर कुछ हिस्सा रखा हुआ है जिसमें ये हार्ट को रखा हुआ है, उसको कार्डिक नौच हम बोल देते हैं कि भाई यहाँ हार्ट रहता। तो ये डिस्क्रिप्शन है सब चीज की, मैंने आप सब लोगों को पंजाबी में और अंग्रेजी में पहले से दे दी गई है। और उसके बाद हमने ये आपको बताया था कल के जो प्रोग्राम हो चुका, मैं उसकी रिवीजन कर रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे जितना भी समय मेरे पास होगा उसके मुताबिक। ये वो रिवीजन है जो अंग्रेजी हिंदी में हो चुकी है। तो स्ट्रक्चर वाइज मैंने बता दिया बाहरी बाहरी, अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम बताएंगे तो अंदर के स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दे रखा है, ब्रोंकियल ट्री। जब हम ट्री बोलते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि एक दरख्त है, उसका एक तना है, उसकी ब्रांचेस हैं, फिर सब ब्रांचेस छोटी छोटी ब्रांचेस टहनियां हैं, और फिर उसके बाद इसके पत्तियां हैं। रूटीन में ऐसा ही हम करते हैं। तो इसी तरह ही जो ब्रोंकस, जो सांस लेने वाली नाली, नाक से शुरू हुई, नाक के पीछे गई तो उसका नाम, गले के पीछे जो है उसका नाम रख दिया लैरिंग्स। लैरिंग्स जो नीचे गई तो एक एपिग्लोटिस का एरिया है, एक जंक्शन है ऐसे कह रहे हैं, जहां दो गाड़ियां आती हैं वो अपना अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसी तरह फूड पाइप और जो है मुंह से जाती है, नीचे जाती है, जब गले से नीचे जाती है तो उसका नाम फेरिंग्स हो जाता है। फेरिंग्स भी इस जंक्शन से गुजरकर जाती हैं, लेकिन ये जहां अपना रास्ता बदल देती हैं। नाक वाली जो नाली लैरिंग्स थी वो आगे आ जाती है, खुराक वाली नाली जो फेरिंग्स थी वो पीछे चली जाती, क्योंकि इसको तो बहुत दूर का लंबा सफर करना ना, लंबी लंबी सवारियां है ना, तो पीछे आगे जाएंगी, तो फेफड़े तो नजदीक आगे, गले गले के जाते ही सबसे पहले फेफड़े आगे, तो इसीलिए इनका रास्ता छोटा, आगे इसको आगे ले जाए। और उसी तरह वो खिड़की के नजदीक नहीं आते कि भाई भाई फलाना क्या, जो खड़ के नजदीक आ गए, खड़ वाले सवारियां नजदीक के आ जाए खिड़की के नजदीक, तो वो खिड़की के नजदीक आ गए हैं। तो इसी तरह ये जो ब्रोंकस हैं, जब एपिग्लोटिस के एरिए से बाहर निकलती है, वो जो लैरिंग्स उसका नाम था, उसका नाम बदल जाता है, उसको फिर ब्रोंकस बोल देते। खुराक की नाली भी जब, जिसको हमने ये बोला था फेरिंग्स, फेरिंग्स भी जब इससे निकलती है तो एक क्रॉस बना देती है कि तुम पीछे चले जाओ, मैं आगे चली जाऊंगी, और इसका भी बाहर निकलते, एपिग्लोटिस एक जंक्शन से बाहर निकलते उसका भी नाम बदल जाता है, और इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, और फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। तो दोनों में ये नाम का तब्दीली आ गई। ईसोफेगस के बारे में हम बात कर चुके हैं क्योंकि पहले लेक्चरों में, आज की बात हमारी ब्रोंकियल ट्री की चल रही है। तो जो ब्रोंकियल ट्री है, ठीक दरख्त की तरह ही इसका तना है, जिसको हम मेन ब्रोंकस बोलते हैं। फिर मेन ब्रोंकस की जैसे दो फाड़ हो जाते हैं कई बार ट्री में, तो राइट ब्रोंकस है और लेफ्ट ब्रोंकस है, दाहिने फेफड़े को जाने वाली और बाएं फेफड़े को जाने वाली, और फिर उसके बाद इनकी छोटी छोटी ब्रांचें आनी शुरू हो जाती हैं। वो जो छोटी छोटी ब्रांचें होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर उनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, सो ब्रोंकाई जो है वो ऐसे कह रहे हैं कि तने से निकली हुई टहने, टाण जो ऐसे तो दरख्त के होते हैं ना, तने से निकले हुए सीधे, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के आगे से छोटी छोटी और टहनियां इससे निकलनी शुरू होगी और उसको हम बोल देते हैं ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियोल्स। यानी अगर पंजाबी में हम कहें या हिंदी में कहें तो बोलेंगे रत वाला, वाल की तरह रत है उसमें, जैसे खून की नालियां होती है ना, खून की नालियां मतलब रत कहते हैं ब्लड को, रत वाला उसका नाम रख दिया कि इसमें ब्लड तो है लेकिन ब्रीक कितनी है जैसे वाल होता है। और उसी के हिसाब से ये जो ब्रोंकस ट्यूब्स हैं, ये अंदर से खोखली है, पाइप है, और पाइप भी फ्लेक्सिबल हैं, और फ्लेक्सिबल भी इस तरह हैं जैसे किसी स्प्रिंग के ऊपर हमने कोई कवर चढ़ा दिया हो, स्प्रिंग इकट्ठा होता है तो ऊपर वाला कवर भी इकट्ठा हो जाता है, स्प्रिंग फैलता है तो ऊपर वाला कवरिंग भी फैलता है। इस तरह इसके अंदर म्यूकस लेयर है, उसके ऊपर मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर लेयर जो है उसके फाइबर जो है वो राउंड टाइप के फाइबर्स हैं, उसके ऊपर फिर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। मतलब ये इतनी सारी इसकी बनतर कुदरत ने बना दी कि इसको भाई इस्तेमाल होना है बहुत लंबा समय। स्प्रिंग जितने भी होते हैं वो स्ट्रांग बनाए जाते हैं ना, हर बार प्रेशर पड़ता है नीचे, फिर प्रेशर कम हो ऊपर प्रेशर पड़ता, तो इसी तरह स्प्रिंग का जो काम होता है वो इन ब्रोंकाइटिस में होता ही होता है। सो ट्रेकिया एक ऐसा अंग था जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो एपिग्लोटिस का जो जंक्शन है उसको कवर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य, जैसे लड़ाई वगैरह हो जाती है ना तो पुलों के ऊपर पीएपी लगा देते हैं, भाई तुम उनको पुलों की राखी करनी है, भाई ये पुल है ये जंक्शन है कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन इसको तोड़ दे, तो इसलिए उस पुल की राखी के लिए पीएपी की फोर्स लगा देती है, ठीक है। और उसको हमने बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया भी इस ब्रोंकस की तरह ही है, कार्टिलेजिनस है। और सिर्फ ब्रोंकस मैंने आपको बता दिया कि ब्रोंकल ट्री का हिस्सा है, तो पहले हिस्से का हमने नाम रखा ब्रोंकाई, मेन ब्रोंकस है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस है। उसके बाद जब फेफड़ों में ये दाखिल हो गई तो उसका नाम हमने रख दिया ब्रोंकाई, छोटी टहनियां निकलनी शुरू हो गई, और उसके बाद छोटी टहनियों से और टहनियां निकलनी शुरू हो गई तो उनको बोल दिया हमने ब्रोंकियोल्स, जिसकी एग्जाम्पल अभी मैंने रतवारा कह दिया, खून की नालियां होगी तो उसको बोलेंगे रतवारा, आर्टरियोल्स वेनियोल्स वगैरह कहना शुरू कर देते हैं उसको ब्रिकी को एक्सप्लेन करने के लिए, और यही लफ्ज जो है हम लोग फेफड़ों में भी इस्तेमाल कर देते हैं उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। मतलब है तो पाइप, लेकिन पाइप इतनी ब्रीक है कि जैसे हमारा बाल है। अब बाल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर भी सुराख होगा, है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बड़े अचंभित होते हैं कि किस तरह भाई इतनी ब्रीक चीज के अंदर भी, क्योंकि बाल में तो आप समझते हैं ना, आपको ब्लड सप्लाई हो ही रही है ना, बाल जो फैलता है बड़ा होता है छोटा होता है जैसे भी है, और उसमें ब्लड सप्लाई तो हो ही रही है, इसका मतलब जो नाली ना जा रही है तो नाली है ही ना, तो इतना सारा स्ट्रक्चर जो है ये ब्रोंकियोल्स के अंदर पाइप की तरह ही आगे अखीर तक जाता है, छोटी ब्रांचेस आ गई। और छोटी ब्रांचेस के आगे मैंने आपको ये कहा कि किसी भी दरख्त की ब्रीक टहनिया के ऊपर फिर पत्ते लग जाते हैं, लीव्स, वो जो पत्ते हैं ना पत्ते टाइप का ही फैला हुआ, क्योंकि टहनी ब्रीक होती है पत्ता चौड़ा होता है, और उसी तरह का ही फैला हुआ जो स्ट्रक्चर आगे ब्रीक टहनियों के साथ लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। ये जो एल्वोलाई है ना ये एक तरह पत्ते के समान है, लेकिन ये भी इस तरह का पत्ता है कि इसके अंदर भी आवाजाही होती है, जैसे बुलबुला फैलाते हैं ना, तो बुलबुला जब हवा जाएगी तो फैल जाएगा, जब हवा बाहर निकल जाएगी तो बैठ जाएगा, इसी तरह इसमें ये कार्रवाई होती रहती है, और ये इसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। और ये दोनों ही फेफड़ों में भरपूर अंदर का पूरा एपेक्स से लेकर बेस तक, एपेक्स से लेकर डोम जो है हमने नीचे बताया वहां तक, तीन लोब्स में राइट साइड, दो लोब्स में बाईं साइड, ये जो ट्री है ना हमारा ब्रोंकियल ट्री, ये फैला हुआ है, मतलब आखिरी सेल तक भी उसके हवा जाती है, वहां से हवा वापस आती है। और फिर इसके स्ट्रक्चर की मैंने आपको एक स्पेशलिटी आपको बताई थी, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इतने स्मॉल सैक हैं, इतने स्मॉल सैक हैं कि एक हिस्से में 300 से लेकर 500 मिलियन तक ये इस तरह की एल्वोलाइज होती। अब गिनती 3 से 5 कहते हैं तो बहुत लंबी जोड़ी है, एक ये सिर्फ ये बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी ब्रीकी अंदर लंग्स के अंदर है कि हर अखीर तक जहां तक विसरल प्लूरा है उस अखीर तक ये हवा जा रही है, और वहां से जो इकट्ठा हुआ है गार्बेज उसको वापस भी लेकर आ रही है। और यहां का गार्बेज जो है वो गैसियस टाइप का है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया था कि भाई पूरे शरीर में जितना भी आवाजाही होती है, सेल को तो मैंने कहा ये था कि भाई सेल एक गोल अंडा है, अब अंडे में दरवाजा तो है नहीं कोई, लेकिन अंडा जब मुर्गी के अंदर होता है तो उसके फैलने का, उसके कुछ ऐसा तरीका होने का, कुछ ना कुछ उसके अंदर जाता होगा, कुछ ना कुछ उसका गार्बेज बाहर आता होगा। इसी तरह हमारा जो सेल है ना, हमारा सेल भी इस तरह का है कि सेल की एक बाहर मेम्ब्रेन है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, पर फिर एक सेल से दूसरे सेल में या खून की नालियों से इस सेल में आवाजाही कैसे होती है, उसका नाम हमने कहा था परमीएबिलिटी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है प्रेशर के साथ, प्रेशर इधर बढ़ा चीज उधर गई, प्रेशर उधर बढ़ा वहां से चीज इधर आई। सो इस तरह अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होता रहता है, और वो एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वोलाई में, जो आखिरी पत्ते वाली चीज हम बता, हालांकि वो पत्ते वाली चीज भी माइक्रोस्कोपिक है, पत्ते वाली चीज भी इतनी छोटी है कि वो भी माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, ओपनाई से नहीं देखते उसको, इतनी ब्रीक है। होता क्या है कि जितना भी खून, मैंने आपको कहा था कि जितना भी खून हार्ट से लेकर ऊपर को आता है, जब बच्चा माँ के पेट में था तब तो वो रास्ता ही बंद था, बंद गली थी, हार्ट के नीचे वाले खाने में खून जाता ही नहीं था, ऊपर वाले खाने में जाता था राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से सीधा ही एक सुराख निकाल दिया था रास्ते में, पड़ोसियों के लिए एक खिड़की निकाल दी थी आवाजाही के लिए, एक दूसरे को सब्जी भाजी चेंज करने के लिए, तो वही खिड़की एक रखी हुई थी कुदरत ने, जिसको फोरामेन ओवल हमने कहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद नीचे का बाल्टी का नीचे का थैला खुल जाता है, और फिर पानी नीचे वो जो खून सारे शरीर से इकट्ठा होके आता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाए, राइट एट्रियम में वेंट्रिकल में जाना शुरू हो जाता है। राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तो वहां आगे रास्ता बंद था, जब माँ के पेट में था तो रास्ता बंद था क्योंकि फेफड़े बंद पड़ेंगे। जैसे ही बच्चा चीखा, बाहर के एनवायरमेंट में आया, 480 mm मरकरी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ा, उसी वक्त वो चिल्लाया, उसके चिल्लाने से फोर्सिबल जबरदस्ती, जैसे अब पानी में कोई डूबता है ना तो वो कोशिश करता है ना कि पानी मुंह में ना जाए या पानी नाक में ना जाए, लेकिन सांस की कितनी आपकी कितना समय होगा, कितनी समय आप रोक पाएंगे, अगर तब तक आपको सांस जितना लंबा आप सांस ले सकते हैं तब उससे ज्यादा समय अगर पानी में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पानी उसमें अंदर चला जाएगा। तो जब बच्चा बाहर आ गया और प्रेशर तो लगातार है तो ऑटोमेटिकली कितनी देर बच्चा रोक पाएगा, अल्टीमेटली ये प्रेशर अंदर उसको बाहर के एनवायरमेंट की हवा को भेज ही देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही ये हवा अंदर गई वो फेफड़े बड़ी जोर से फूल गए, जब फूल गए तो फिर ये जो राइट वेंट्रिकल से जो खून आया हुआ था बॉडी से इकट्ठा होकर ये सीधा फेफड़ों में चला जाता है, और उस नाली का नाम हमने कहा था पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे जाकर दो डिवीजन में हो जाती है, एक राइट को चली जाती है एक लेफ्ट फेफड़े को चली जाती, उनको सप्लाई कर जाती, और वो भी ब्रीक होते होते ब्रीक होते होते, जैसे मैंने इसकी डिवीजन आपको बताई है ना, जैसे कि फेफड़ों के अंदर की ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकियोल्स होती है, एल्वोलाई होती है, इतनी ब्रीकी, इसी तरह ये जो खून की नालियां फेफड़ों में दाखिल हुई हैं राइट वेंट्रिकल से, ये भी सब डिवीजन होती होती होती होती अल्टीमेटली हरेक एल्वोलाई में पहुंचती। मतलब क्या है कि राइट वेंट्रिकल का जो खून है वो फेफड़ों में पहुंच गया, कहां तक, अप टू एल्वोलाइज, उन एल्वोलाइज में ये जो खून वहां पहुंच गया है ना, वो खून के अंदर पूरे शरीर का गार्बेज इकट्ठा करके आ रहा है, हर एक सेल से वो आ रहा है, वही खून इकट्ठा होके आ रहा है, वही खून राइट एट्रियम में गया था, वही खून राइट वेंट्रिकल में गया था, वही खून अब फेफड़ों में आया है, कि इसमें क्या है, गार्बेज हर तरह का है, गार्बेज बहुत तरह का है, उनमें से जितना भी गैसियस गार्बेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन टाइप की और बहुत सी गैसेस हैं जो नुकसान दे सकती हैं शरीर को, ये सारी गैसेस हल्की है, बाहर से आने वाली गैस जो ऑक्सीजन है जो हमारे एनवायरमेंट में है वो भारी है, ऑटोमेटिकली इसमें प्रेशर के साथ अंदर जाएगी, और अंदर का जो है वो मल या गैसेस का जो हल्कापन है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये रेगुलर क्रिया वहां पर हरेक सांस के साथ होती रहती है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, अंदर सांस खींचना बाहर सांस निकालना, अंदर का सांस खींचना बाहर सांस निकालना, इस क्रिया के साथ ये लगातार एल्वोलाई में खून आ रहा है, लगातार एल्वोलाई से खून फिर वापस जा रहा है और जो फेफड़ों से वापस जाता है वो चार नालियां होती, दो हरेक फेफड़े में होती, वो जो हार्ट के बाईं तरफ खून भेजती हैं, दाएं से लिया बाईं में भेजा, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट में आपस में बाद में कोई लिंक नहीं रहता, मां के पेट में रहता है, अल्टीमेटली वो सुराख बंद होना शुरू हो जाता है, विद इन 80 मिनट्स वो बिल्कुल बंद हो जाता है, नहीं होता तो प्रॉब्लम है, नहीं होता तो आजकल उसके लिए सर्जरी वगैरह करवाते हैं या और बहुत सारा कुछ करते हैं, कुछ थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे वो सुराख ऑटोमेटिकली फोरामेन ओवलग बंद हो जाता है और फिर राइट साइड हार्ट का लेफ्ट साइड हार्ट से कोई लिंक ही नहीं रहता, ना भाई अब तेरा मेरा लेना देना बंद है, तो फिर फेफड़ों से होकर जो खून आ रहा है वापस, दो नालियां राइट लंग से, दो नालियां लेफ्ट लंग से आ रही हैं, वो लेफ्ट एट्रियम में खून दे रही हैं, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहां से पूरे शरीर को फिर जाना शुरू हो जाता है, गार्बेज अभी भी है इसमें, गार्बेज अभी भी है, लेकिन फेफड़ों ने अपना काम किया, हमारा चैप्टर आज फेफड़ों का है, फेफड़ों ने जो काम करना था कि मैं गार्बेज यहां का जो है ना वो बाहर निकाल देता हूँ, जितना भी गैसेस डालते थे तो फेफड़ों से गैसेस गार्बेज निकला और ऑक्सीजन उसमें उसने भर दी, कहाँ भर दी, रेड ब्लड सेल्स में, लाल खून के जो कण है ना, लाल खून के कण में, मैंने बहुत बार बताया कि भाई ये तो खाली ट्रेन के डिब्बे हैं, और खाली ट्रेन मालगाड़ी होती है ना तो उसमें सामान भरा जाता है, और उसमें सामान भरा जाता है फिर आगे जाके वो अनलोड होती है, खाली हो जाती है, इसी तरह वहां पर ये जाती हैं एल्वोलाई में जाकर, ये अपना सामान उधेड़ दिया उन्होंने, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन आ गई, ये खाली बोगियां जो भरी हुई थी ट्रेन के डिब्बे थे, ये फिर वापस चले गए अपना सामान लेकर, तो इस तरह का मैकेनिज्म जो है इन फेफड़ों का होता रहता है। अब ये मैकेनिज्म मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि कैसे फेफड़ों को, मैं हार्ट की तरफ अब नहीं जाता, उसके बाद उसकी टर्न है, लेकिन फेफड़ों में ये इतना काम हो गया कि एक तरह का गार्बेज रिलीव हो गया, हालांकि बाकी गार्बेज कहां जाएगा, सबसे पहले गर्भ खुराक खाते हैं तो सबसे पहला गार्बेज तो मल त्याग करते हैं ना, एटी करते हैं, या जो किडनी में चला गया खून उसमें से वे पेशाब पर निकाल देती है, या उसमें जितने भी साल्ट वगैरह हैं, क्योंकि ब्लड की एक नॉर्मल कंपोजिशन है कि इसमें इतना सोडियम, इतना पोटेशियम, इतना ये वो जो भी कुछ है वो रहेगा, और ऐसा कहें कि किडनी में इस तरह का फिल्ट्रेशन लगा हुआ है कि वो बोलता है कि भाई ब्लड को तो इतना चाहिए, शरीर में इतना रहना चाहिए, तो बाकी को वो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है, और बेचारी किडनी खराब हो जाए, उसका मीटर ही खराब हो जाए, उसको पता ही नहीं चलता, नहीं पता चलता तो क्या होता है, वो ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, और जब ज्यादा मात्रा इस चीज की हो जाती है तो हम बोलते हैं ओ तेरे को तो शुगर हो गई भाई, ओ तेरे को तो ये बीमारी होगी जी, वो बीमारी होगी, तो फिर हम कहते हैं ये होता कहाँ से, किडनी से होता है, ये किडनी में नुकसान होगी, तो खैर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई ये जितना खून है जब स्किन में पहुंचता है, चमड़ी में पहुंचता है, तो चमड़ी सबसे बड़ा अंग है शरीर का, और वो बोलते हैं कि अच्छा भाई ये सभी से गार्बेज नहीं निकला है ना, तो बाकी सारा बचा हुआ गार्बेज मैं निकाल देती हूँ बाहर पसीने के रास्ते, चमड़ी कैसे निकालेगी, पसीने के रास्ते निकालेगी, और कुछ गार्बेज जो है वो बड़ा सख्त होगा, वो हमारी चमड़ी ऐसे तो लगती है ना, फिर पूरा लेयर बना हुआ कपड़ा होता है ना, तो कपड़ा लगता है कि बिल्कुल एंड प्लेन, उसमें कोई सुराख नहीं है, और पानी डालो तो नीचे निकल जाता है, रेत डालो मिट्टी डालो तो वो नहीं निकलेगी, मतलब क्या हुआ कि मसाम की इलास्टिसिटी की अपनी एक लिमिट है कि यहां तक का सगड़ी चीज इससे निकल जाएगी, दूसरी नहीं निकलेगी, तो चमड़ी में जो जो ये ब्लड गया उसमें उसकी लिमिट है कि इतना गार्बेज रोजाना हमारे पसीना निकलता है, चाहे सर्दियां भी हो हम महसूस करें या ना करें, लेकिन सर्दी में एक दिन ना नहाओ तो देखो कितनी बदबू आनी शुरू हो जाती, वो उसी पसीने की उसी गार्बेज की है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन निकल रहा है, जिससे हमारी चमड़ी बार गंदी हो रही है और उसको सफाई की जरूरत होनी शुरू हो जाती है, तो वही अगर गार्बेज ज्यादा संगना है, ज्यादा मोटा है, नहीं निकल पा रहा, रेत की तरह जैसे मैंने कहा कि कपड़े में रेत छानना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मिट्टी छाननी हो तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए कुदरत ने चमड़ी में एक तरह के टोके लगाए हुए हैं, जब पट्टे कुतरने वाले होते हैं ना, वो चारा काटते हैं हम लोग, तो उसी तरह ही एपोक्राइन ग्लैंड लगाए हुए हैं। ये संघना गार्बेज है, इसको कुतर देते हैं, ब्रीक कर देते हैं, फिर जो खून में पानी आता है उससे निकलकर वो बाहर निकलता है, तो जब वो बाहर निकलता है खारिश होती है, चमड़ी लोग खारिश करते हैं, ये खारिश होगी वो खारिश होगी, और जिसको बहुत ज्यादा इस तरह का निकलता है तो उसको छीला जाता है, तो उसको बोलते हैं इसको तो एक्जिमा हो गया है, इसको तो ऊजिंग एक्जिमा हो गया है, अलग अलग चीजें बोलते हैं। मतलब क्या है कि अंदर से गार्बेज जिस तरह का गंदा निकल रहा है जिससे बाहर की चमड़ी को भी बदबू आ रही है। तो खैर हम फिर वापस आते हैं अपने फेफड़े की तरफ। तो फेफड़ों का ये मैकेनिज्म मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि इसका काम है खून से या शरीर सारे से इकट्ठा होके आया जितना भी गैसियस टाइप का गार्बेज है उसको बाहर निकालना। पाइप है खाली है, पाइप में आवाजाही, उसी पाइप से जान आवाजाही होती है, ऑक्सीजन की उसी पाइप से आवाजाही बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की। अब इस रास्ते में हालांकि ये मैकेनिकल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैकेनिकल टाइप का है कि प्रेशर से, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट का प्रेशर है, जैसे मछलियां होती है ना पानी में रहती हैं, तो पानी में ही उनको उतनी ऑक्सीजन मिल जाती है, उनका भी लाइफ ऑक्सीजन से, पानी में उनको उतनी ऑक्सीजन मिल जाती है जिससे वो जिंदा रह सकती है, और हम लोग पानी में नहीं रह सकते जिंदा, ज्यादा समय नहीं रहेंगे, इसीलिए हम इस एनवायरमेंट में गुजर रहे हैं, हमें इस तरह सेट किया हुआ है कि इस एनवायरमेंट में हम अपने को सेफ महसूस करते हैं, इजी महसूस करते हैं कि इसमें जितनी ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। पहाड़ी में जाएंगे तो सांस लेना औखा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और चीजें हल्की हो जाएंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा सेटअप कुदरत ने इस तरह किया हुआ है कि हम इसमें अपने आप को आसान समझते हैं, और ये क्रिया हमारे शरीर में आसानी से होती रहती है, मैकेनिकल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा केमिकल वाली बात नहीं है, कि आसानी से एक्सचेंज होता रहता है कि ये हवा गई, प्रेशर बढ़ा, और जैसे इंस्पायर करते हैं प्रेशर बढ़ा, एल्वोलाई के अंदर तक ये हवा चली गई, और वहां से ऑटोमेटिकली ये हल्की हवा थी वो बैकवर्ड वापस आ गई। सो नॉर्मली ऐसा होता रहता है। अब इसकी आई बीमारियां, तो भाई बीमारियां चलते चलते मैकेनिज्म है, हमें जब पता ही चल गया कि इसमें एक ब्रोंकस है, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स हैं, और फिर उसके बाद एल्वोलाइज हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका, फिर हमें ये भी पता चल गया कि ये जो ब्रोंकस ट्री है बना हुआ है इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का सॉफ्ट लेयर लगा हुआ है, उसके ऊपर मांसपेशी का लेयर है वो जो सर्कुलर टाइप गोल गोल स्प्रिंग की तरह लगा हुआ है, उसके ऊपर जो एक लेयर लगा हुआ है स्प्रिंग को कवर करने के लिए वो कनेक्टिव टिश्यू को बना हुआ है, ये सब चीजें हम जानते हैं। अब अगर फेफड़ों की कोई बीमारी होती है, क्योंकि फेफड़े तो पूरे सारे जैसे आप मेरी उंगलियां देख रहे हैं, पूरे के पूरे फेफड़े का अंदर का मटेरियल इसी चीज से ही भरा हुआ है, पूरे का पूरा इसी चीज से ही भरा हुआ है, ब्रोंकस ब्रोंकस के बाद ब्रोंकी ब्रोंकिया ही ब्रोंकिया उसके बाद ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वोलाई, पूरा का पूरा इसी तरह से भरा हुआ है, यही स्ट्रक्चर है, और इनका स्ट्रक्चर अप टू एंड यही है जो मैंने आपको बताया। अब इसमें कोई रुकावट आएगी तो सांस की बीमारी हम कहेंगे। अब इसकी रुकावटें अलग अलग तरह की हैं, किस किस तरह की रुकावटें आती हैं उसका वेरवा हम आप सबको दे रहे हैं कि भाई अगर फेफड़ों की बीमारी हो तो पहले मैं उन बीमारियों का नाम ले रहा हूं जो आम तौर पे आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, फिर थोड़ी और बीमारियां आ जाएंगी जिनका आम रूटीन में आपने नाम नहीं सुना हुआ, लेकिन बीमारियां वो हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग है, उनकी पहचान अंदर से भी बाहर से भी अलग है। अंदर और बाहर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस चैप्टर में मैं बीमारियों की डिटेल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूं, और उस आइडेंटिफिकेशन में भी मैं आप सब लोगों को वो चीजें बता रहा हूं जो आप बाहर महसूस कर सकते हैं। किसी को क्या बीमारी है वो बाहर उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, किस तरह हमारे शरीर को हमें बाहर जो सामने बैठे आदमी को पता चलेगा कि इस आदमी को ये बीमारी है, वो निशानियां हम आपको याद करवा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दमा आपने सबने सुना हुआ है, इसको तो दमे की बीमारी है। हालांकि किसी को नहीं पता कि दमे में होता क्या है। सांस रुकता है ये सब जानते हैं, सांस रुकता है ये सब जानते हैं, सांस आसानी से नहीं आ रहा। 14 से 16 बार एक तंदुरुस्त आदमी को एक मिनट में सांस लेना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो 40 टाइम्स होता है, आस्ते आस्ते कम होता जाता है, कम होता जाता है, और अल्टीमेट हम लोग सेट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, तो फिर 14 से 16 बार सांस होता है। ठीक है, ये एक अडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेशन का रेट है। अब इससे कम हुआ, हाँ हाँ ये मैं याद कर रहा हूँ, जितने पहलवान होते हैं या जितने जो माउंटेन हाइकिंग वगैरह करते हैं, ऑटोमेटिकली फैलते फैलते उनके फेफड़े बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका रेस्पिरेशन रेट आम आदमियों से कम होता है। आम आदमियों से जी पहलवान होते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका रेस्पिरेशन आमतौर पर कम होता है, और आम जो रूटीन आदमी हैं उनका 14 से 16 बार पर मिनट रेस्पिरेशन होता है। तो पहली बात तो ये हम देखेंगे कि अगर किसी का रेस्पिरेशन 14 से 16 बार नहीं आ रहा है, तेज तेज चल रहा है, तो हम समझेंगे इसको सांस की बीमारी है, कुछ ना कुछ ऐसा है, जो ये जो ब्रोंकियल ट्री में आना जाना है ये नॉर्मल रही है, कम है तो भी, ज्यादा है तो भी। इस एक बात तो करेंगे कि इस सारे ताने बाने में कोई खराबी है। दूसरी बात, इसके रस्ते में अगर कोई फॉरेन बॉडी, मान लिया जाए ट्रैफिक जा रही है रोड के ऊपर और आगे कोई चीज दरख्त गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक इरिटेशन या झुंझलाट पैदा होगी, ड्राइवर यार ये क्या, ये दरख्त टूट गया है, अब जा नहीं सकते, रुकावट होगी। और वो जो रुकावट इस तरह आसानी से रुकावट होती है, पहला सिम्टम जो पैदा करती है कफ, खांसी होती है। अब खांसी जो आप कहिएगा कि जितनी भी बीमारियां हैं आम तौर पे उसमें खांसी होती होती है, यस, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेफड़ों की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब में खांसी कफ एक इनिशियल सिम्टम होता है, कफ इनिशियल सिम्टम होता है। और अब आप जाते जाते ट्रैफिक रुकते ही किसी न किसी कार से, वट एवर इट इज, अब वो ट्रैफिक रिलीव होने में, ट्रैफिक रिलीव होने में समय लगेगा ना, तो समय लगेगा तो पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी ना, जब पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, जगह तो उतनी ही है ना, रोड पे जाने के लिए सड़क कितनी ही है ना, तो फिर क्या होगा, जो साइड की चीजें वो भी रुक जाएंगी। तो इसको बोलते हैं ए टाइटनेस ऑफ चेस्ट। तो पहली बात जो किसी भी फेफड़ों की बीमारी में आएगी उसको हम बोलेंगे कफ, दूसरे को हम बोलेंगे टाइटनेस, और टाइटनेस हो जाएगी तो यार बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बैठे बैठे तो थक गए हैं सीट पे, पता नहीं ट्रैफिक कब खुलेगी, कब हम चलेंगे, परेशान हो गए ना, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट हो गया यार, जो छाती में लगता भी नहीं, बहुत मुश्किल है काम, है जी। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती तो झुंझलाहट होती है जिसको हम डिस्कम्फर्ट बोल दिए, और फिर इस चीज से दर्द होगी। दर्द एक इस तरह की चीज है कि किसी एरिए में कोई जितनी चीज रहनी चाहिए अगर उससे ज्यादा चीज आ जाएगी, वो जो परेशानी पैदा करेगी, तो उसको हम पेन से एक्सप्लेन करते हैं। शरीर में भी ऐसा ही है, शरीर में भी एक शरीर का एक नॉर्मल चलन है, और उस नॉर्मल चलन के चलते चलते अगर रुकावट आ गई तो फिर अल्टीमेटली पहले ये कफ पैदा करेगी, ठीक है, इधर उधर हम देखेंगे पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, दिस इज कफ, फिर हम लगेगा यार बहुत मुश्किल होगी, पता नहीं कब का ये ट्रैफिक खुलेगी, डिस्कम्फर्ट होना शुरू होगा, टाइटनेस होगी, सड़क जो है रुक गई है, पीछे ट्रैफिक जाम हो गया है, और ये आपको पेन करेगी, फिर आपको झुंझलाहट पैदा होगी। तो वही बात फेफड़ों में होनी शुरू हो जाएगी इनिशियल सिम्टम्स में, मैं इनिशियल सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, और फिर टायर्ड तो हो ही जाएंगे, अगर लंबी वहां पर एक्सीडेंट हो गया कोई आगे, और उसके बाद ट्रैफिक जुड़ते जुड़ती बहुत बड़ी ज्यादा ट्रैफिक जुड़ गई, अब निवारण नहीं हो रहा है, तो सीट पर बैठे बैठे भी आप थक जाएंगे। और इसी तरह की कोई काम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सांस ही नहीं नॉर्मल आ रहा है, तो आप टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे। यही बात आमतौर पे जो फेफड़ों के साथ संबंधित बात होती है उसमें होना शुरू हो जाता है। और जिस तरह मैंने एक्सीडेंट की बात बताई है, जिस तरह मैंने इसका किसी ट्रक के गिर जाने की बात बताई रोड के ऊपर, इसी तरह इसका स्मोकिंग वगैरह, कोई लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं, या इन्वायरमेंट कुछ ऐसा आ गया, पड़ोस में आग लगी हुई थी उसका धुआं रोड के ऊपर आ रहा था और अब उसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है। तो फेफड़ों में भी क्या है, रास्ता है नाक से लेकर नीचे फेफड़ों तक जा रहा है, और उस रास्ते में अगर आपने धूम्रपान कर लिया, सिगरेट पी लिया, या इस तरह का कोई स्मोक या एनवायरनमेंट ऐसा जो चीज अंदर नहीं जानी चाहिए, ऑक्सीजन जानी चाहिए ना, पर जब किसी एयर में ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है कि ऑक्सीजन कम होगी दूसरी ज्यादा होगी, अगर वो जाएगा तो फिर आप खांसना शुरू कर देंगे, ज्यादा खांसी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सा सिम्टम है, ये सिम्टम भी होगा तो आप कहेंगे छाती में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब आप ये कहेंगे कि ये जितनी बातें आपने बताई हैं ये तो सभी फेफड़ों की बीमारी में होती है, फिर कैसे अंदाजा लगाएं कि इस बंदे को आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, या क्या क्या है। अब वो बातें मैं आपको बताने लगा हूं कि जो अस्थमा होता है ना उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हम उस चीज को बोलते हैं जो एक जगह आकर जम गया, स्टेबल हो गया, अब इसको ठीक करना मुश्किल है। डाइवर रोड में जाते जाते, अब रोड आगे यहां से नहीं जा सकती, डाइवर्शन लेकर ही आपको टेढ़ा होकर जाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम अगर फेफड़ों में आ जाए, वो ब्रोंकियल ट्यूब है, अगर तो सीधी जा रही है तो फटाफट सांस जा रहा है, फटाफट सांस जो है वापस आ भी रहा है, ये काम पूरे का पूरा चल रहा है। लेकिन अगर किसी जगह ये स्वेल अप हो गया, मान लिया उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर क्या होगा, वहां से हवा जाएगी तो टेढ़े होके जाएगी, आगे पीछे होगी, और यही बात अगर पूरे ब्रोंकियल ट्री में हो गई तो फिर इधर से उधर, इधर पहाड़ी रास्ता होता है ना, तो पहाड़ी रास्ते में कभी रोड इधर जाती है, इधर जाती, कितने घुमाव होते हैं। और दमा उस चीज का नाम है जब फेफड़ों के इस ब्रोंकियल ट्री में इस तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है कि एक सीधी रोड जा ही नहीं रही, सीधा रास्ता है ही नहीं ब्रोंकस का, और उसमें इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। और उसमें होगा क्या, रेस्पिरेशन रेट जो है वो आपका इंस्पिरेशन फोर्सफुल हो जाएगा, जबरदस्ती आपको फोर्सफुल। अब कहिएगा कि फोर्थ गियर में तो गाड़ी बड़ी आसान चलती है, लेकिन हम तो पहले गियर में चल रहे हैं क्योंकि डाइवर्शन है, रुकावट है, आगे जोर से सांस लेंगे हम। जो लोग भी सामने बैठे होंगे उसके दमे की बीमारी हो तो सांस ले रहा है, जोर से ले रहा है, और ये भी होगा कि वो एक मिनट में 14 सांस पूरे नहीं कर पाएगा, या ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ज्यादातर कम होने की पोजीशन जो है कि ये नहीं हो रही। और उसमें क्या है, अंदर गार्बेज रुक गया, जिसको बाहर आना बड़ा जरूरी है, बाहर से सामान कम जाएगा, चार रोटी नहीं खाएंगे, दो रोटी खा से गुजारा तो कर लेंगे, काम चलेगा, लेकिन अंदर हमारे गार्बेज रुक गया तो बदबू आ जाएगी, उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए हमारा इंस्पायरेशन बड़ा फोर्सफुल होता है और हमारा एक्सपायरेशन जो है वो लॉन्ग होता है, लंबा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आस्ता आस्ता उसको भी ऐसे से निकलना ना, बाहर से तो फोर्सिबल ही आप हवा अंदर डाल रहे हैं, जोर से आपने हवा ली और किसी न किसी तरह वो गई, लेकिन जो अंदर से आनी है वो पैसिव प्रेशर है, एक्टिव प्रेशर नहीं है। तो पैसिव प्रेशर का जब आएगा तो फिर उतने ही सामान को निकालने के लिए ज्यादा समय चाहिए, एक एक्सपायरेशन के लिए जितना समय चाहिए हमें, क्योंकि हमने कहा कि 14 से 16 बार आवाजाही होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट के जो हिस्से हमने कर दिए 60 सेकंड बना दिए, तो एक सेकंड जो है 16 × 64 अप्रोक्सीमेटली 4, तो उस हिसाब से वो जो एक्सपायरेशन है वो टाइम ज्यादा लेगा, नहीं निकल पाएगा उतनी देर में। और जब सामने बैठा आदमी आप ये देखें कि सांस ले रहा है, जोर लगा रहा है, और फिर जो बाहर से एक्सपायर कर रहा है वो हवा को, दैट इज ए लॉन्ग टाइम। तो मैं इस बात से आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट इंस्पायरेशन बट डीप, लॉन्ग एक्सपायरेशन बट स्लो। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम कहेंगे दमे की बीमारी है इसको। तो बाहर बैठे आपने और कुछ नहीं किया, उसको हाथ लगाया कुछ नहीं किया, आपने ये देखा ये बंदा सांस कैसे ले रहा है, सांस ले रहा है फोर्सली, बड़ी कोशिश कर रहा है कि हवा ज्यादा मैं अंदर भेज सकूं। उसके बाद आपके बस की बात नहीं है, जल्दी आप भेजेंगे फटाफट है ना, हम अंदर को जाने की हम कोशिश करते हैं कि हाल में एंटर करना हो ना तो बोलते के पीछे न रह जाए, अंदर एंटर कर ही जाए हम। और जब बाहर निकलना है अब आपके पास की बात नहीं है, अब वो लंबा हो जाएगा, बराबर नहीं रहेगा, लंबा हो जाएगा। तो जिसका सांस बाहर निकालना लंबा हो जाए आप समझ सकते हैं कि उसको दमे की बीमारी है। तो बाहर से पता चल गया आपको कि दमे की बीमारी है, और अंदर की बात मैंने आपको बता दी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इस तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है कि वो रिवर्सिबल नहीं, जो सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह करते हैं, लंबी सांस करते हैं, उनका ऐसे हो जाता है, और वो ठीक होने की कगार पर नहीं है। पर एक बात मैंने बार बार आप सब लोगों को बताई है कि भाई ये सिस्टम जो है, जो शरीर है ना, ये मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से चलता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है एनाबॉलिक रेट, कैटाबॉलिक रेट। दूसरी तरह हम समझाएं कि हमने कमाए $5, खर्च किए 3, 2 हमारे पास बच गए। जैसे जैसे बच गए, इसी तरह शरीर का जो चलन है, इसकी डेवलपमेंट का, इसमें प्रोग्रेस का, खुराक से जितने वाले अंदर जमा किया उससे ये बढ़ा जाता है, बच्चा जवान हो जाता है। और उसके बाद एक स्टेज आ जाती है कि भाई ये जो एनाबॉलिक रेट है, कमाई का काम जो है वो कम हो गया है, और खर्चा तो है ही है, खर्चा दूसरा है ही है, तो फिर क्या होता है, हम बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिक रेट में एनाबॉलिक रेट जब कम होना शुरू हो जाता है, कैटाबॉलिक रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं भाई, अब तो मेडिसिन भी लेनी है, डॉक्टर के पास भी जाना है, पहले तो जवानी में तो जाते ही नहीं थे, अब तो वो भी फीस पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर के आखिरी श्वास तक मेटाबॉलिक रेट चलता रहता है, और मेटाबॉलिक रेट की जो रेशियो है जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे शरीर बूढ़ा होता है। और जब अंदर के सेल बूढ़े होने शुरू हो जाएं उम्र से पहले, तो उस चीज का नाम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर सचमुच ही बुढ़ापे में है तो फिर तो ठीक है, फिर तो रिकवरी की बात ही नहीं, अब इसको चलना ही है समय के साथ। लेकिन जवानी में अगर ऐसा हो तो हम यही कहते हैं ना, ना मैं तो दमे के केस ही कर देता हूं, करते ही हैं डॉक्टर लोग, कैसे ही? इसलिए कि वो उस एनाबॉलिक ऐसी दवाइयां देते हैं कि एनाबॉलिक रेट को बढ़ाया जाए ताकि वो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था वो ऐसा ऐसा बैकलॉग लग गया है, ऐसा ऐसा वो बैकलॉग ठीक हो जाए, ऐसा ऐसा बैकलॉग, इट मे टेक 2 years, इट मे टेक इवन मोर, इट मे टेक लिटल लेस, कम बेस हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हम कहेंगे, ये जो कुदरती नेचर की जो बात मैंने फिजियोलॉजी की आपको बताई है एनाबॉलिक रेट की, उसके हिसाब से तो हम किसी बीमारी को नहीं कह सकते कि ठीक नहीं हो जाए, हो सकती है अगर हमारी समझ ये काम करे कि इसमें किस तरह इसका एनाबॉलिक रेट बढ़ाया जाए, किस तरह कैटाबॉलिक रेट घटाया जाए, तो ऑटोमेटिकली रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। तो दमे में क्या है कि हमारा एनाबॉलिक रेट कम हो गया, उनके सेलों का, वो जो फेफड़े के अंदर के सेल से उसमें जो मेटाबॉलिक रेट चल रहा था वो कम हो गया, और उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। जब हम इन्फ्लामेशन ही बोलते हैं तो उसका मतलब होता है पहली 5 साइन है इन्फ्लामेशन, जहां जहां पे इन्फ्लामेशन है वहां वहां का मतलब ये है कि उसके अंदर हीट होगी, मतलब 12 अंदर की हीट को हम कैसे देखेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर हाई राइज ऑफ टेम्परेचर हो गया तो आप देखें कि 98.4 हम नॉर्मल समझते हैं, तो उस बंदे का 98.4 तो नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का एक इंडिविजुअल टेम्परेचर होता है, कुछ लोगों का नॉर्मल ही जब हेल्दी होते हैं तो 97 रहता है, तो उसके हिसाब से जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे वो सब नॉर्मल आ जाएगा। जब इन्फ्लामेशन हुआ तो उससे वो बढ़ जाएगा, यही इंडिकेट करेगा। हालांकि हम सोचते रहे कि यार 98.4 तो नॉर्मल होता है तो इसका तो 98 ही आया है, तो इसको बुखार तो नहीं है, हम नॉर्मल तौर पर ये कहते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कुदरत का, नेचर का, जैसे उसने इस शरीर की फिजियोलॉजी बनाई है, इंडिविजुअल उसने इंडिविजुअल फिजियोलॉजी तैयार की है हर बंदे की, इसका इस पर विवेक मैं पूरा लेक्चर आपको दूंगा कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को किस तरह हम लोग डॉक्टर लोग डील करते हैं। तो उसके हिसाब से एक आदमी का नॉर्मल टेम्परेचर तो 97 है, और ये जो बंदा सामने बैठा है जिसको हम बोल रहे हैं इंफ्लामेशन क्रॉनिक हो गया फेफड़ों में, जिसको हमने दमा बोल दिया है, और इसका तो टेम्परेचर 98 ही पहुंचा है, तो इसका मतलब नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल से भी थोड़ा पॉइंट कम है। लेकिन उस इंडिविजुअल करेक्टर के हिसाब से ये टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि उसका नॉर्मल तो 97 रहता है। तो खैर ये बात फिर हम इंडिविजुअल करेक्टर की बात करेंगे। तो मैं दमे की बात आपके साथ कर रहा था, तो दमा अंदर के सेलों की इस तरह की तब्दीली है कि लगता है कि अब ये बुढ़ापा जाने वाला नहीं है, अब इन सेलों में जो चेंज आ गई है उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसमें चेंज आ गई है। तो पहली साइन मैंने कहा कि हीट हो जाएगी, जिसको हमने टेम्परेचर से कहा। दूसरा वो हम देख नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे रेडनेस। लेकिन आप दमे वाले को बोलो जो बार बार सांस ले रहा हो, आंखें बाहर को आनी शुरू हो जाती, लाल हो जाती, रेडनेस। उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लोकोमोशन खत्म हो गया, काम नहीं हो रहा है, जो काम उसको करना चाहिए फंक्शन वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। और जब ये सब सारी चीजें होती हैं तो फिर क्या हो गया कि रास्ता ब्लॉक हो गया, स्वेलिंग होगी, कोई और चीज आगे आ गई, फिर क्या हो गया, इसके साथ दर्द भी होगी, तकलीफ भी होगी, परेशानी भी होगी। तो ये कार्डिनल पांच साइन है इन्फ्लामेशन के, ये पांच के पांच साइन जो है दमे वाले के अंदर मिलेंगे। और जब ऐसा हो तो बाहर से हम देखकर बता देंगे कि भाई ये बंदा दमे का पेशेंट है। उसके बाद आज का समय मेरा खत्म हो रहा है, उसके बाद मैंने आपको अभी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि आपको इस तरह याद हो जाए कि पेशेंट सामने बैठा, अब आपने ना तो स्टेथोस्कोप लगाया है, ना थर्मामीटर ही लगाया है, ना उसकी नब्ज देखी है, सामने बैठे हुए पेशेंट को आप कैसे कहेंगे कि इसको दमा हुआ, इसको ब्रोंकाइटिस हो गई है या इसको प्लूरसी हो गई है। ये सब चीजें इस प्रोग्रामों में मैं आपके सामने रखता हूं, और अगले प्रोग्राम में फिर हम इससे आगे चलेंगे कि भाई और जो बीमारियां हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कैंसर लंग है, प्लूरसी का नाम अभी मैंने लिया, प्लूरसी है, प्लूरसी दो तरह की होती है, एक वेट होती है, एक ड्राई होती है, ये सब चीजों को आप बाहर से कैसे जानेंगे, ये चीजें मैं आप सब लोगों को इन प्रोग्रामों में बताऊंगा। जब टेस्ट होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर लेबोरेटरी में टेस्ट भेजेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग, क्योंकि जब ये मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ये जब लैब टेस्ट हमारे सामने इतने नहीं हुए थे, तो उस वक्त हम कैसे जानते थे, हकीम वगैरह थे वो नब्ज वगैरह देखते थे। मैं समझता हूँ नब्ज भी नहीं देखनी है, हमने कुछ नहीं देखना है, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो यो कर रहा हूँ कि पेशेंट सामने बैठा है और उससे आप डायग्नोस करके बता सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, चाहे उसको थायराइड की बीमारी है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड की उसकी बीमारी है, चाहे उसका किडनी या हार्ट फेलियर हो रहा है, इसकी इस तरह की निशानियां मैं टाइम टाइम पे आपको बताऊंगा कि आपने कुछ नहीं किया, कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया, बावजूद इस पे आप बता सकते हैं कि इसको ये बीमारी। तो आज का समय समाप्त हो रहा है, मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं कोई हल नहीं निकल रहा है, सेकंड ओपिनियन लेने के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर आप होम्योपैथी के साइंटिफिक अप्रोच के तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। ये गुजारिश हम हमेशा ही करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इन प्रोग्रामों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ हेल्पफुल चीजें आपको पता चल रही है, तो फिर भाई आप इतना योगदान जरूर करें कि और लोगों को बताएं, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को बताएं कि वो भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े। मेरा गुरदीप सिंह के नाम से होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम से ये मेरा फेसबुक चैनल है, इसी नाम से ही यूट्यूब चैनल है, और सब अलग रेडियो स्टेशन है जो 2012 से चल रहा है, या और बहुत से रेडियो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो सहयोग कर रहे हैं कि इस मैसेज को, इस तरह की जानकारी को पूरी दुनिया में जितना फैला सकते हैं फैलाए। प्रवास रेडियो का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा इन प्रोग्रामों के साथ जुड़ते हैं और अपने जितने भी उनके लिसनर्स हैं उन सबको ये खबर पहुंचाते हैं। प्रवास रेडियो न्यू जर्सी से चलता है, उसके बाद रेडियो पंजाब है, या कई और रेडियो स्टेशन जो है समय समय मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनका सबसे धन्यवादी हूं कि ये मैसेज हम पूरी दुनिया में वक्त तो वक्त फैला सके, जानकारी दे सके लोगों को। आप सबका शुक्रिया, आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब थैंक यू।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू चिमा साहब
1: जी। थैंक यू।

van dos, dos. ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतो ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाह वाह आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करता

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 858-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट से दोस्त दर्शन सिंह खक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा टाइम चेंज हो गया सी रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे आई है सो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच लो कुछ गीत सुनदे हैं जी पहला गीत आपां सुनदे हैं बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी ते फिर आपां अगले गीत दे नाल चालू करांगे जी

फ्रेंड्स वर्ल्ड के खूबसूरत स्रोते हो। ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला,

0: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उसके बाद आप जी वाल लावांगा, आप जी दियां कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा
1: दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम। जिन्हें भी श्रोते वीर भैन भरा साडे नाल जुड़े ने या जिन्हें बाद च भी जुड़ना, उन्हां सारयां दा जी आयां नूं वेलकम। और अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी, प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दिल दी आवाज प्रोग्राम न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टूडियो तो लैके थोड़े नाल हाजिर हो गए जी। ते लो जी, तो बाद आपां करदे हां जी।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाउंदे हन रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप दा नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 7324325
1: नमस्ते आदाब दोस्तो तुसी सुन रहे हो भेनो ते भरावो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतो, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा,

अकेले में अकेले फिरी बाजार घर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, मैं क्या गमला पगला दीवाना।

पेट में मुकड़स पाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जैसे यमला पगला दीवाना हो रब

प्रचार किया कि धर्म एक मकड़ जाल है, अंधविश्वास तो भी वड्डा मकड़ जाल है। आओ देश का विकास अरदासा करके नहीं, पखंड करके नहीं, दीवे जगा जगा, धूफा जगा जगा, देश का विकास नहीं होना। धूफ का, आरतियां का, अरदासा का, विकास का कोई संबंध नहीं। तुसी एवें अपने मन की शांति वास्ते सोच है तुहाडी कि यह अरदासा नाल ऐं हो जाएगा, नहीं, हथी करके होना है, कोशिश करके होना है। आओ देश का विकास अरदासा करके नहीं, खुद मेहनत करके करिए। रब को मंगन की थां चीजा खुद पैदा करिए। अहे बाबा टल पक्की पकाई कल, मंगन की थां आओ खुद पैदा करिए। स्वर्ग नरक नूं मारो गोली, अपना मुल्क ही स्वर्ग बनाइए। दोस्तों ए बिल्कुल सच है, असी अपना मुल्क स्वर्ग बनाउणा है कि नरक बनाउणा है, ए देश दे नागरिकां ते सरकारां दे हाथ विच हुंदा है। ते आ लो जी, एंड च मैं तुहानूं एक गाना होर सुणा दिआं, ते ओ जिहड़े दो चार मिनट रह गए ने, झूठ बोले कौआ कट। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਏ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਦੀ?

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आप सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला।

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: कंडी दीवार जहाँ हाथी मुड़े कट गया चित्र सिंह सरदार अगवा भूली हाथी पा गया
1: ना फिर की होया

0: خاص پروگرام جڑا تھڈے تک اسی پہنچا رہے ہیں
1: بڑے پیار ستکار نال سات شری اکال اور اسی اس شہیدی پندرواڑا جو دسمبر دا آخری دو ویکا ہے اس سبندھ وچ واپریاں سکھ اتہاس دیاں گھٹناواں دا ذکر کر رہے ہاں اور انہاں گھٹناواں دا ذکر کردے ہوئے کل اساں ایک گل کہی سی आनंदपुर साहब दे किले तो निकलन दे कारणा दी गल व्याख्या कीती सी असी और एक सज्जन ने भी कहा सी कि ओदे होर भी कारण हो सकते ने या महासंघ दे संबंध जो असी गल कीती सी उन्होंने ये कहा सी भी होर कारण हो सकते ने वैसे क्योंकि मैं तो इस गल दा वैसे ही हामी हां कि हर गल तर्क संगत होनी चाहिए कि की हो सकती है कि नहीं हो सकती या इहदे विच कुछ होर भी हो सकता है।
2: बिलकुल डॉक्टर साहब,
1: हां जी, जब तक असी वन साइडेड हो के किसी गल नूं विचारदे आं भी मैं ही ठीक हां, उस वेले असी गलती कर रहे हुंदे आं।
2: बिलकुल,
1: और इस गलती दे संबंध विच कल मैं उस तों बाद फिर होर भी इतिहास दी फरोला फराली कीती और उस दे विचों कुछ होर एहो जिहियां बड़ियां अचंभे वालियां गल्लां निकलियां कि जिहड़ियां मैं समझदा भी साडा सिख इतिहास अगर सुनेगा तो एकदम अचंबा होएगा या मनन तैयार नहीं होएगा।
2: जी,
1: एक सज्जन ने इतिहास दे विच लिखा आ भी साडे को जिस तरह नील नदी दी घाटी, नील नदी है ना,
2: जी जी बिलकुल,
1: नील नदी दा 4000 साल पुराना रिकॉर्ड साइंसदाना ने इकट्ठा कीता होया कि एदे च कदों चढ़ा आउंदा है, कदों उतरा आउंदा है, किस किस तरह एदी जिहड़ी क्रिया है ओह चलदी है। नील नदी जिहदे च जहाज भी, समुद्री जहाज भी चलदे आ।
2: जी जी, मिस्र दे विच जी
1: सुनिया होना ओदे बारे ज्यादा। जी, इसे तरह करके एक सज्जन ने कल उस फरोला फराली दे विचों मैनू ए मिलिया भी लिखिया भी साडे कोल पिछले 200-300 साल दा रिकॉर्ड मौजूद आ कि उस समय दे विच जेड़ा समा असी दसंबर दे दिनां दी गल कर रहे हां, उस समय दे विच उत्तरी भारत दे विच किते भी हड़ नहीं सी आउंदे, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2: ਜੀ,
1: ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਭਈ ਜੇ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭੀ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ

0: गीत होर सुन दे जी सिंध शिंदा
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले भाई आज तो नजारा आ गया
2: भाई थोड़ी जन लेके आया
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया और ताली जेतों वाले ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई जिंदा बहुत पैदा पैदा हो जाए
2: मालको ला दें
1: भाई वाह वाह वाह वा।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो पीआरओ रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो पीआर रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स बिल्कुल बिल्कुल दोस्त।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाड़े अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह ठाकरे नाल

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तो हाडे अपने

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसी साथी की सरगर्मी का कोई किसी किस्म का भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देण। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तों बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तों प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना कीती ते ना ही मौत तों डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तों ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया। उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा, उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने। संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि। किसाना किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओह उच्च कोटि दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओह वधिया पुत, भरा, पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युद्ध ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों इक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी। ये तिन्ने एक दूजे के आपस में वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह होणा ने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है, ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओह लावारस किदां होया। घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके। हां जी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है, भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमां दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हूं लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਬ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ? ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोतियो, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनो दिलां ते दस्तक देण वाला, तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला, पाख दे मसले लिआउण वाला, पंजाब दी सैर करवाउण वाला, हक सच दे ढोल वजाउण वाला, कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, भाई मथियां ते त्यूड़ियां ते पैणियां ही ने जदों खरियां खरियां सुनाईयां गईयां, कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, लबां ते हासे लिआउण वाला, तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला, पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार, मिठे बोलां नाल लै आप दे दिलां ते राज करन वाला,

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जैसे यमला पगला दीवाना हो रहा।

रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियो, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़िया च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा। आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनों दिलां ते दस्तक देण वाला, तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला, पाठ दे मसले लियाउण वाला, पंजाब दी सैर करवाउण वाला, हक सच दे ढोल वजाउण वाला, कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, भाई मथियां ते त्यूड़ियां ते पैणियां ही ने जदों खरियां खरियां सुनाईयां गईयां। कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, लबां ते हासे लियाउण वाला, तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला, पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार, मिठे बोलां नाल लै आप दे दिलां ते राज करन वाला,